0: अपहरणा अवै
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मंथन नाम रते करंग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: जो जल में जल

0: सतमित कोय न लाखे।
1: प्रभु के सेवक को नाम पहुँचे,
0: सेवक हो जाय उचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया।
1: नीके केरी में कल रखे,
0: करे लश्कर कोट लाखे।

0: अवनाशी सुख अपने आसन
1: जन्म मरण को कहा विलासन
0: जब पूर्ण कर्ता प्रसोए
1: जब
0: अवगत गोचर प्रवेका
1: जब

करके 18-10-20 तक अपने कंठागर तो अपनी रसना तो बोल के भाई मनी सिंह जी नू लिखारी ला के लिखवाई है। उस वेले साध सिंह जी अमृत वेले तो लैके दोपहर दे समय तक जिन्नी बाणी लिखी जांदी सी शाम दे दीवाना दे अंदर सारी बाणी दी व्याख्या महाराज साहब सच्चे पातशाह जी और बाणी दा शुद्ध उचारण बाणी दी शुद्ध व्याख्या महाराज साहब जी आप अपने उन्हां 48 सिखां नू जो महाराज जी दे नाल उस वेले मौजूद सन हर रोज संध्या दे दीवाना दे विच सुनाया करदे सन।

गुरु प्यारी सवारी साध संगत जीओ, असी आप संगतां दे चरणां च बेनती ताइयों करदे ने कि आपां नूं नाल नाल जदों असी बाणी पढ़दे हाँ सुणदे हाँ ते नाल नाल गायन भी करनी चाहीदी है। सतगुरु जी ने बख्शिश करके किन्नी दुनिया दे विच्चों चुण के सानू अपनी गोद बैठन दा गोद विच बैठन दा इस भाग समा बख्शिश कीता। कितनी दुनिया है होर फ्री मोड दे विच ही ला लो, कितने लोग रहिंदे ने, सारे अपने अपने कम्मां च बिजी ने, पर गुरु ने साडे ते बख्शिश की है सानू अपनी गोद विच बैठन दा यह समा बख्शिश किया है। तो क्यों ना यतन करिए कि समा सफला हो, ताइए होना है। हर की भगत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, एकागर चित होके गुरु चरणा च हाजरी लगवाईए। जितने आप बैठे हैं जे सारे आप बोलीए तो हाल गूंजना चाहिए है, कल भैन जी की आवाज इधरों की दो चार बीबिया की बाकी सब चुप बैठे आप। आंसर गुरु साहब आप ही दे रहे इस शब्द के विच भी, राम राम जपन के नाल परमात्मा का नाम जपन के नाल की होंदा है। जिस बोलत मुख पवित होए, यह जिहड़ी साडी रसना है यह पवित्र होंदी है। तो जे चाहुंदे आ साडी रसना पवित्र होवे, मुख साडा पवित्र होवे ते नाल जपीए गाईए। जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस आराधे जम किशना कहे, जमा की फाही कट्टी जाती है वाहिगुरु नूं जपन दे नाल। जिसकी सेवा सब किश लहे, ते वाहिगुरु नूं जपन दे नाल, वाहिगुरु नूं ध्यान दे नाल, वाहिगुरु की सेवा करन दे नाल, जो साडे मन दीआं इच्छावां ने सब पूर्ण होंदीआं ने। आखो सतनाम, राम राम बोल, राम राम त्याग हो मन के सगल काम। फरीदा जिन्हें कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। मता तेनों शर्म का सामना करना पवे परमात्मा की दरगाह दे विच, इस करके ओ काम छड जेड़े तेनों इज्जत नहीं दवाउंदे, जेड़े तेरे लायक नहीं ने, ओ काम छड के की कर। राम राम बोल, राम राम। आओ सारे हाजरी लगवाइए, सब ने हाजरी लगवानी जितने भी आप जी बैठे हो, चाहे जिस तरह में जो कोई बोल सकता है उस तरह ही बोली जाओ, कोई गल नहीं। सतगुरु जी का वचन है, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या दरगह पे। नेत्रां दे नाल असी बाणी नूं देख रहे हाँ, श्रवणा दे नाल सुनने हाँ, ते रसना नाल गायन दा यतन करिए। आओ सारे रल के हाजरी लगवाइए।

सतगुरु जी की कैसी बख्शिश है। देखो सतगुरु सानू ताकीद भी कर रहे हैं कि उस वाहिगुरु नूं ध्याओ, राम राम जपो, तो जप के कदे ये नहीं सोचना कि उस वाहिगुरु का असी अंत पा लिया है। सिर्फ उहदे अगे अरदास ही करनी है कि वाहिगुरु असी भुलणहार जीव हाँ, तुसी बख्शणहार हो, असी पापी हाँ, तुसी पापियां नूं तारन वाले हो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। ये अरदास करनी हमेशा। कदे सतगुरु कहिंदे अपने मन दे विच होमे नहीं लैके आउणे कि मैं बहुत ध्यांदा हाँ, बहुत सिमरन करदा, बहुत सेवा करदा, ये सब फिर बिरथा चलिया जाएगा। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बचन है, तीर्थ बरत अरदान कर मन मह धरै गुमान, नानक निहफल जात ते ज्यों कुंचर इशना। जिस तरह हाथी नूं कोई नवा दे तो फिर बाहर आके सिर च खेह पा लैंदा है अपनी सुंड दे नाल। ते सतगुरु कहिंदे जे कोई चंगा काम करके, दान पुन करके, सिमरन करके, सेवा करके मन दे विच गुमान करता है, हंकार करता है कि मैं कुछ किया है, तो सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहिंदे वो फिर इस तरह निफल चलिया जाता जिस तरह वह हाथी का किया होया इशनान, जिदा कोई मतलब नहीं रह जाता बाद। सो इस करके सतगुरु जी दे अगे हमेशा अरदास करनी है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कमाती, जी राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। असी तुहाडे बच्चे हाँ सतगुरु जी, तुसी सानू पालन वाले हो, साडी प्रतपालना करन वाले हो, जे तुसी जपाउंदे हो ते तुहाडी कृपा दे नाल जपिया जांदा, जे सेवा करदे हां ते तुहाडी कृपा दे नाल हुंदी है, मता साडे विच कोई ताकत नहीं असी कुछ कर सकते, साडे ते इन्नी ताकत नहीं कि असी मूँह चो कोई बोल बोल सकीए। सतगुरु जी का बचन है, ता मैं कहया कहन जां तुझे कहाया। सतगुरु ते इन्नी निम्रता दे नाल बाणी विच गल करदे ने, मैं ता ही बोल सकता हाँ वाहिगुरु जे तू बुलाउंदा है, बुलाया बोली तेरा। सो आओ मता ये सतगुरु कहिंदे फिर राम राम जप के कि मन दे विच हंकार आ जाए, तो नाल दे शब्द सतगुरु ने कहता राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। वह बहुत वड्डा है, उहदा कोई अंत नहीं है, उहदा अंतला पारला बना कोई नहीं है, बस उहनूं ध्या सकदे हाँ, तो जदों उहनूं ध्याउणा शुरू करता तो वह फिर अपने वर्गे बना लैंदा है। ये उहदी दयालता है, कृपालता है। आओ सारे इस पावन शब्द नाल जुड़िए।

तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय पार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे शब्द जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ ने दयावे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जीओ सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पंजवा मन मह चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

निर्भउ का सोहिला हमारी जिस सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जी अड़े संभालियों देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवाए तस्ताते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यों हो ऐसा हिब स्यों मेल। कर करे हो पहुँचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला शे घर शे।

रहाओ विश्वे चस्या कड़ियां पहराओ तिथि वारी मा हुआ सूरज को रुत अनेक नानक करते के कहते वेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रवचा दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराई फूलंत ज्योति कैसी आरती हुए पव खंडना तेरी आरती अनहता शुभ दुआ जंत पेरी रहा सहस्तव नैन नन नैन है तो एक सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नानी एक पद गंध बिन सहस्तव गंध विचलत मोही सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिस्त चानन सब मैं चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभाव है सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो वंदनो मोहे आए प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंको होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधने जानिया तिने अंतर हमे कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समानी दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहुसोब खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर आख राख वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाड़ चलो हरलाहा आगे बसन सहेला औत घटै दिन सरै नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए पियावै एहो रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाइय साधक संग जे मार के गने जाए ना गोसा हर का नाम मुहा संग तोसा जे पैडे मां अंध गुबारा हर का नाम संग जियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंह नू

संजमत साधन निमख निमकर शरीर घटावे तापी होमे मैल ना जावे। अर्खे नाम संसर्गाश नाहे नान गुरमुख नाम जबत गत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान न मनते हुटाए। सूज करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात। इस देही का बहु साधना करे मनते कबू न मिख्या ठर। जल तो वे बहु दया नीत शुद्ध गावे काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम तरे पतत बहुमूच। बहुत सियाण जमका पाओ व्यापे अनक जतन कर त्रिशन्ना त्रपे। पेख अनेक अगन नहीं बुझै कूट पाप दुर्गे नहीं सज्जै। छूट सुनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल। अवर कर तूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिंद नहीं माने। हर का नाम जब दुख जाए नानक बुलै सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे।

प्रसंग में जो षडना स्वस्त्र कर माने जो होमन सो दूर पराने छूट जाए तिसका श्रम कर संग सा हित पर हर चंदन ले उतारे तो हे गर्द प्रीत पसम संग होए।

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत लामे तिसको सिमरत परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर से त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तसे त्याग कत्तब लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाठ पहर ताका जस गावी जय।

सासंग धर्मराय करे सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा, साधु कह संग पा पलायन, सासंग अमृत गुण गायन, साधक संग सर्वदान गम, नानक साधक संग सफल जनम, साधक संग नहीं कजगार, दर्शन भेट तो होत निहाल, साधक संग कलुकत हराय, साधक संग नरक पर हराय, साधक संग इहा उहा सुवेला, सासंग बिछरत मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म सादर बसै, नान कुदरै सा सुंदरसै, साधक संग सुनो हर नाव, सासंग हर के गुण गाव, साधक संग ना मंते बिसरा, सासंग सरभर निस्तराय, साधक संग लगे बड़ा मीठा, साधु कै संकट गीठा, सासंग भया गयाकारी, सासंगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, साध की महिमा वेदना जाने, जेता सुने तेता बखियाने, साध की उपमा तह गुण थे दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा

था। करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा। गुरप्रसाद विख्या पर हरै मन की बासना मन ते ठरै। इंद्री जित पंज दोख ते रहत नानकूट मते को ऐसा अपरस। वैष्णो सहज सुप्र सुप्रसन विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करतो बने कर्म दस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू बल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राचे। मंत्र अंतर सिमर गोपाल सब ऊपर अवध कृपाल। आप दृढ़ अभरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत भावे। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग। मंदे बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग। पापा मन खोबे तिस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत मंथन अर्पय विशन प्रीत। अर्घे चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारथ पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे। अर्घी कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे। वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुखम मैं जाने असूल। चाह वरना गो दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहर नाम है जपे कहु नाम। जो जो जपे तिसकी गत हुए सास संग पावे जन कोहे। कर गिरबंतर उतारे पास प्रेत मुग्ध पात्र को तारे। सर्वरूप का अवखद राम कल्याण रूप मंगल गुण गाम।

नर्ग स्वर्ग फिर फिर अवतार अनग जतन करे आत्म नहीं द्रवय हर दुर्गे को कैसे गवाए। आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मनुहे कहो नानक ताकि निर्मल सोए।

अवतार राष्ट्रपति सांद गए दुख ने आर जा घटाए सांद गए दुख ने जमते नहीं छुटाए सांद गए दुख ने सुख सब जाए सांद गए दुख नरक में पाए सांद गए दुख ने मत हो मलहीन

में आप समाया। सोदत सोदत सोदा सिज्या गुरु प्रसाद तत् सब पूज्या। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई असूल। न के जन्मे न किश मरे आपन, चलते आप ही कराए आमन जामन। दृष्टान दृष्टा क्या कारी, तारी सब सृष्टि आपे आप।

चंद्रमण ए करणी करगिर बस गो नाम दिया नानक सो चंद्रमण थिया जाके मन गुरु की प्रतीत तजया तजन आवे हर ब्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हृदय एको हे सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सदमुख कहत

विश्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय हर नामन कबार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कश परम सह सयान बलया ना जाइय नानक ऐसा गुर भड़पागी पाइय सफल दर्शन बेगत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर बचन कर आगाने मन संतोखातम पथियाने पूरा गुरु खेव जाका मंत्र अमृत दुष्पे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस भावित सलाय मिलाए जे बाय गुस्सत नेक सतपुरुष पूर्ण विवेक काहु बोलना पाओ छत प्राणी अगम अगोचर प्राप्त निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत गिन न पाई अनक भगत बंधन करहे चरण कमल हृदय सिमरे सदबलिहारी सदगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने

मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार गुंट उड़ता वे सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुकुन बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस सुबह गो करे परी करनी सा सोभा बजर की सरणी अनुग पावी। रोग ना जाए रोग मिटे हर आपका दलाए।

अष्टपदी। आप कथया आप सुनने रापे का विस्तार, जात सभावित सृष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए, तुम ते भिन्न नहीं किछु आपन सु सब जगत परोए, जाको प्रभु जी आप जाए सचनाम सोई जन जन पाए, सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ, जिस राके तुस गोए ना मारे सो मुआ, जिस मनो बिसारे तज अवर कांगो जाए सब श्रेक निरंजन।

हे लोक सुखी है परलोक सुहे ले नान घर पर भया फे मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदाहर अमृत भजन हर के गुण गाओ परांतरण का यह स्वभाव आठ पैर पर भेखो नेरा मिटिया ज्ञान मन से अंधेरा सुन बदे सिर दे बसाव मन छे नानक बल भाव हालत बल द्वेरे स्वार राम नाम अंतर उतार

तिसे दुर्गा अंगू जय बरे रख नारती आए निर्भव जपे सगल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटा जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मनो सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिजन को कोई ना पहुचन हार सिर पर ठाडा कर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन बेख उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुप सफल दर्शन सुंदर रूप धन सेवा सेवक परमान अंदर जामी परख प्रधान जिसमन

तारे समाये इस्ते हुए सो ना ही बुरा उरा कहो कि न कश करा आप अला कर तू तरीकी आप जाने अपने जी की आप साज धारी समसाज ओत पोत आपन संगराज।

बिन भाने के नाय करी। जेती सिरठी उपाई वेखा बिन करमा के मिले लई। मद विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बजाई।

तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहै उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख

असंख मूर्ख अंध कोहर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सिर

लेख जाने लेख लेख धर्म विचारे गावे सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे अंध इदासन बैठे देवत्या दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ निरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्नी उपाय तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई

आज अमृतमय दात बख्श रहे। आब हो शांत मिल हो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। आओ भाई संतो महापुरुषो रब दे प्यारियो, आओ मिल के वाहिगुरु करिए, नाले वाहिगुरु की कथा करिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्ना जिहड़ा आपां 40 मिनट तकरीबन समझे ना चैप्टर सारा, वो इस लई इत्थे समझे महाराज जी ने अज गल कीती है कथा दी। शब्द दे विच कथा किहो जी होनी चाहीदी है, ओहो जी होनी चाहीदी है जिहो जी महाराज ने सानू दित्ती सी। कलगीधर पातशाह ने श्री दमदमा साहब की पावन धरती दे उत्ते उस कथा च और समय दे बीत जाण च जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आ गया गल खराब हो जानी है सारी। उहदे नुक्ते निगाह समा समय दे बोल शब्दावली ये चीजा नवीं हो सकदियां ने, नवा तरीका हो सकता है, पर सिद्धांत नहीं हिलना चाहिए। जिथे सिद्धांत हिल गया उत्थे बखेड़े खड़े हो जाएंगे। महाराज जी कहते आओ भाई रब दे प्यारे हो, कथा करो रब दी, वाहिगुरु दी करो, वाहिगुरु दे नाम दी करो। कहण तो भाव है जिहो जी असी बाणी लिखी है बाणी दे पै च रह के वैसे ही उहदी व्याख्या नूं धारण करो अपने हिरदे दे। नहीं तां गुरु हरराय साहब जी का वचन है जिन भय अदब ना बाणी धारा, जान हो सो सिख नहीं हमारा। जिन्होंने बाणी का भय ते अदब धारण नहीं किया, महाराज जी कहिंदे साडे सिख ही नहीं हन उह। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके महाराज दे भय च कथा करो, महाराज दे प्रेम च कथा करो, महाराज जी दे अदब च कथा करो।

गुरु आखो सतनाम। गुरु दे शब्द नाल जुड़ के कहिंदे वाहिगुरु दे शब्द नाल जुड़ के वाहिगुरु नाम जहाज है। वाहिगुरु दे नाम ते जहाज, नाम रूप जहाज ते सवार हो के कहिंदे भाई संसार सागर तो तर जाओ तुसी। मेरे मन हर गुण हर विच रहो, इस करके महाराज जी कहिंदे मेरे मन वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बड़ा सोहना है, हर एक दे हिरदे दी पूर्ण करन वाला है, लाज रखन वाला है, नवाजन वाला है। इस तरह करके वाहिगुरु दी उपमा करो, नाले वाहिगुरु दा नाम जपो। अगे महाराज जी वचन करदे ने, मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार पर हो। जिन्हां दे मथे ते लिखिया वाहिगुरु ने, उन्होंने भाई गुण गाए है वाहिगुरु जी ने, ओ मिल के संगत नूं संसार समुंदर तो पार तर गए। हुण इत्थे आ के जदों भी गुरबाणी च मस्त

ताणया मिन थम्मा गगन रहाय शब्द निशाणया सूरज चांद उपाए ज्योत सुमाणया।

तिन तन सुख न होए महला पहला ऊनवे आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन भंग पौड़ी दोवे तरफा उपाय एक वरत्या बेदबाणी वरताए अंदर वा।

किछु न जाए। सच्चा सैब मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लाए न पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजण।

तारणहार शब्द पछाणिए चोर यार युआर पीड़े कहानी आए निंदक लाए तुबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए।

छोड़ हुवे सुनयासी, नानक कहे विचारा पौड़ी। हौ का आखा एक जीव तिरांत नक नहीं पाया, सच्चा शब्द विचार से तुझ ही महे सुमाया। एक भगवा वेस कर परम दे, बिन सतगुर किने ना पाया। देश

बख्श। हर के संत मिले हर प्रगटे, उगर गए बिखिया के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा, जिन तारियो हर रस कर साक। हर के संत मिले हर मिलया, जैसे गऊ देख बस।

ने सादारे कोट परा देखिन मैं तारे जा को चीत आवे गुरे अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सदगुर अपना राखे सो जन हर रस रसना चाखे कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुखी उज्जल भया कानड़ा महला पंजवा राधो स्वामी राधो तुझे स्वामी अपने

साध संग मैं मन पर बुद्धा, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संग मैं मन पर बुद्धा, तृष्ण न बुद्धि बहुरंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया।

प्यारा सह सुमाद सुमायो, कौन कहे तुम ते कछ नाही, तुम सुमराथि अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लाहो, करणा महला पंजवा।

अंग संग काया संत सरसन शरण गई पूर्ण अवनासी आने उपाव थकत नहीं करसन कर गलिए नानक जन अपने।

बल बले बल बले बल गए पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जतन कर विचार अनक दास

ज्यों ज्यों जपे तिवै सुख पावी, सतगुर सेव समावी गोरा, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जप

कर ठाकुर मैं सतगुर भसम लगावे गो कारण महला चौथा मन हर रंग रत गावे गो पै पै त्रास पाए है निर्मल गुरमत लाग लगावे गो रहाओ हर रंग राता सदबरागी हर निकट तिना कर आवे गो तिन की पंख मिलता जीवा कर कृपा आप देवावे गो दुबदा लोभ लगे से प्राणी मन कोर रंग नयावे गो फिर उल्ट्यो जन्म होवे गुर बचनी गुर पुरख मिले रंग लावे गो इंद्री दसे दसे पुन तावत त्रैगुणिया खिन नहा टिकावे गो सदगुर परचय बसकत आवे मोख मुक्त सो पावे गो ओंकार को रब रहे आसो एक समाहे समावे गो एक रूप एको बरंगे सब एकत बचन चलावे गो गुरम के को एक पछाता गुरमक होए लखावे गो गुरमुख जाए मेले निज महली अनह शब्द बजावे गो जी जंद सब सिष्ट उपाय गुरमुख सोभा पावे गो बिन गुर पे

त्यांचे विचारण्यात कौला नितसार संभाले सबजे जयंत हर बस निकट सब जौला सब जे जस अबजाय सी जे सतगुर पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणे समौला श्लोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाव मन गुरतुठा मिले माए महला चौथा हर किस सति प्रहिड़ी हर को मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक स्ते गत पत पौड़ी पंजे पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बजया अनंत मूल राम साहब देखिया गुरसब्दी गोबिद गजया आजुगाद विसहारे को मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया साब धन कहो गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछल सुबर भारे वहाना जना सतगुर मनया जन नानक बड़ भाग लहाना महला चौथा हर हर नाम संकहार हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम गाद हर जन कितबद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जबंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै उगड़ लाए पौड़ी हर अगम गोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पेका किस वकर होए सो वर्णिए तस्वरूप न रेखा जब बजाय आप बुझाए दे सोई जन देखा सत्संग सतगुर चढ़साल है जित हर गुण सिखा तन तन सुरस न तन कर तन सोपादा सतगुरु जित मिल हर लेखा लेखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जब ये सतगुर पाए हर हर नाम पवित है हर जब सुनत दुख जाए हर नाम तिन्ह अरस दिया जन्मस्तक लिखिया तोहर पाए हर दरगह जन पहनाई है न जिन हर मन वसिया आए जन नानक दे मुख उजले तिन हर सुनया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमत पाया जाए जिन तोर मस्तक लिखिया तिन सतगुर मिलियाए तन मन शीतल होया संत वसी मन आए नानक हर हर चौदया सब दल दुख ले जाए पौड़ी हम वारिया तिन को सदस दा जिन सतगुर मेरा प्यारा देखिया तिन को मिलिया मेरा सतगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम त्याया गुरमति ते स्वरूप नहीं प्रभ रेखया गुरबचन त्याया जिन अगम हर ते ठाकुर सेव करा लेखया सब कहो मुख हो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर ला हर भगत सिख्या श्लोक महला चौथा राम नाम राम रब रहे राम राम राम रमीत घट घट आत्म राम है प्रभ खेल कियो रंग रीत हर निकट बसे जग

मन पानी हर कथा सुनावो मेरे गुरु सुख मेरे हर प्रभु कथ कहानी क्यों पाइये क्यों देखिए मेरा हर प्रभु सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुर बचनी नाम समाणी तिन विटो नानक वारिया जो जपदे निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सजन पाया ज नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर संत है मन तन नाम समाए।

कृपा करो मधुसूदन हरदेव नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया हर हर भगत है बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखया रहाओ। गुर के भाग सिमरो दिन राते मन हर हर हर बसया हर हर हर कीमत है जग सारी कस चंदन जस कसया। हर जन हर हर हर लिव लाई सब सागत खोज पया जो किरत संजोग चलियो नर निंदक पग नागन सोहे जलिया जन के तुम हर।

ये सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखे जाना नानक सरन पाया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरुपदेश हर नाम त्यायो सब किलबक दुख लाते रहाओ रसना एक जस

सहज पया हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया।

वक्त मसीत ओठ परिदा उजू साज सुबह नाज नमाज गजारी जो साई जो सिर साई नानवे सो सिर सब कप उतारी जो सिर साई नानवे सो सिर

भगवत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर

मथुरा को प्राव श्राभ में अर्जुन गुर भगत कै हित पाए रहे हो मिल राम सिंह अंत न पावत देव सवा मुन इंद्र महाशिव जोग करी फन वेद बरंच विचार रहे हो हर जाप न छाड़ो एक घड़ी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारिन को गुरजोत अर्जन माहि धरी जग और न याहे महात्म अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट दूर गए मथुरा जन अमृत नाम पियो एह पद ते मत चूक रे मन भेद बभेद न जान बियो पर तस्रदा गुर अर्जन का हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदार तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में बूढ़ थे

ताहु पुछ तड़न कल ताहु खरे सुजान वन्या इने कपरी झड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबण नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई।

सहस जियरा पर रहो माँ को अवर न टंग नानक गुरमुख छुटिया हर प्रीतम स्यों संग बाग मरा मन मारिया जिस सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिला बहुड़ न मरना होए कीचड़ हाथ न बूढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरबर सची पाल आगन मरा जल लोड़ लोह बिन गुर निध जल नाहे जन्म मरा परमाइया जे लख कर्म कुमाहे जम जागात न लग गई जे चला सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पादा।

0: कल्लर केरी छपड़ी कौआ मल मल नहाए मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए काग को पंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावण नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत न पाओ पैदा खादा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आलाओ नानक नाम सलाहे तू होर हो मैं आवाओ जाओ
1: हैन विरले नाही कणे पैल फकड़ संसार नानक लगे तुर मरै

अवैकताय ज्ञान हीन अज्ञान पूजा अंधवरता वा भाव दूजा गुरबन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सजबन साखी मूलो ना बाकी माणू कले उठी चले साध नाही आवे ही गले राम चुराए दल समेल वै अंतर बाले अधिकार बंतर की सेना सेविय मंतन जूझ अपार सीता लै

जमण मरना चुकाए रंग लगा दूजे पाए बंधन बंध पवायन करना कछु न जाए जिनको

गुर के पौड़ी जाय चढ़ाय करम परापत होए अंतराय बसा गुर शब्द विचार कोय नानक शब्द।

आर्या कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु।

पाया हुकम मने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाड़ी कह नानक सुनो संत हो कथ्युआ कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोनी जेनेत परम

तेरा अंत पाया सोर नार मोन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया जी जन सब तो दिव पाए एक वेख पर सुन आया लभ लो भंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप चुटा तिन अमृत गुरते पाया भगतां के चाल निराली चाल निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लभ लो भंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जने आवत जया हर वासना।

हे गुणी संसार परम सुता सुत्या रहन विहाड़ी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोल रहे अमृत बाणी कहे नानक सो तट पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहाड़ी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय मनो क्यों विसारिय वृदाता जे अगन में आहार पहुंचावे ओसनु कह पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारिय जैसी

कर्म कमाया के कर्म कमाया तो दूसरी राजा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया।